नाम तेरो आ सुनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आ सुनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बड्डी नु जिदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते नहीं वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का कर देने ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

ये सिखा में गुरु साना। गुरु की करे जे सिखा दे मन में ही प्यार ना हो। पिछौर आनंदपुर साहब संगत आई, सारी संगत ने मथा टेक।

सैव जी कहने लगे कि दे जोगा आपको सतनाम श्री वाहे कि दे जोगा है जो? कोई मां प्यो जोगा होता है, कोई अपने आप जोगा, कोई दुनिया जोगा, कोई देश कौम जोगा, तू कि दे जोगा है? जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछया बच्चे दे कर्म देखो।

डर के रहना चाहिए। जेड़ा वो भय विच रहता है सुखी रहता है, ते जेड़ा वो नाल दावे करे, जेड़ा वो नाल गिनतियां गिने, वो फिर सुखी नहीं रहता। गुरु ने इम्तिहान पाया, जोगा सिंह घर पहुंच गया, और सिर्फ भी चिट्ठी लैके पिछे पिछे पिशौर जा पहुंचे। जोगा सिंह की बरात तुरी सिख भी नाल, लड़की वालियां दे घर पहुंचे, मिलनी हो गई, सारियां रस्मां हो गई, हुण आनंद कारज का वेला होए। जोगा सिंह लावां लै रहे है, ते उस सिख ने वो चिट्ठी जोगा सिंह दे हाथ फड़ाई। जोगा सिंह लै भाई, कलगियां वाले पिता दा ए सुनेहा तेरे वास्ते। प्यार बहुत सी जोगा सिंह दे मन विच, बहुत श्रद्धा सी कलगियां वाले पिता वास्ते। गुरु दी चिट्ठी देखी, मथे ना लाई, चिट्ठी चुमी, चिट्ठी पढ़ी, ओ जोगा सिंह तेरी बड़ी लोड़ है, बैठे ते उठ पो, खड़ाए ते तुर पो। ते जोगा सिंह ने लावां विच छड़ दिती। घर वालियां ने कहा, जोगा सिंह तैनू रोकदे नहीं, चला जावी पर लावां ते पूरियां लै लै। कहन लगा, नहीं, मेरे कलगियां वाले पिता दा हुक्म है, जोगा सिंह तुर पै ते मैं हुण रुक नहीं सकदा। सात संग, यह है जोगा सिंह दा प्यार। गुरु दी चिट्ठी पढ़ी, लावां विचे छड़ के जोगा सिंह तुर पिया, सफर करदा होया हुशियार।

चौकीदार खड़ा देखे यार। थोड़ी जी संगा आई फिर जोगा सिंह आगे चला गया। चक्कर काट के आना, पहरेदार हट जाएगा, फिर वेसवा दे चुबारे चढ़ांगा, पर सात संगत कौन है चौकीदार? कलगियां वाला साधु जिड़ा आया ही रखिया करने वास्ते है।

गुरु साहब किथे जद सिखा ने कहा सुते हुए ने आराम कर रहे हैरान हो गया जोगा सिंह ऐ वेला कोई सौण दा नहीं क्यों सुते हैं ते सिखा ने कहा किसे मूर्ख सिख ने सतगुरां नूं सारी रात जगाई रखे ते जोगा सिंह गुरु साहब दे कमरे जा पहुंचे मत्था टेकिया सतगुरु उठ के बह गए अखां लाल हन क्योंकि सारी रात जागते रहे पर चेहरे ते उही प्यार है जिहड़ा सिखां वास्ते अपने प्यारियां वास्ते हमेशा

अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए गवाइए ना आपसे ईर्खा दुखदा आपसे नफरत छड़ के छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदा विच प्यार नहीं जिना दे मना विच प्यार नहीं उना दे घरां विच प्यार नहीं जिन घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं वो फिर शमशान होते हैं क्यों घर चंगे समान नाल चंगे फर्नीचर नाल चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता घर बनता है प्यार नाल इतफाक नाल घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है घर वो है जिथे ना पानी का प्रवाह चलता है घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है घर वो है

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि मैं सतगुरु।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते भाई साहब भाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। भाई साहब फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीस दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा, सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नू दान करदे हन सुख दिंदे हन, ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनू सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, ये सदाउंदा है बाल सखाई मित्र, ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है, कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उसनूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन,

गुरु शब्द दी। गुरमत अनुसार भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता बारे फरमान कर रहे हैं। कहिंदे ने सिंघासन ते बिठा के सुदामे नू जोड़ दिता गुरु दे शब्द नाल। गुरु दे शब्द नाल ज्यों जुड़िया मानो दसम द्वार पहुंच गया। द्वारका नगरी दे मालिक ने नौ द्वारियां विच्चों कढ के दसम द्वार पहुंचा दिता, जिथे उहदे सारे ही माड़े कर्म जिहड़े सन उह नाश हो गए। भाई साहब भाई गुरदास जी फरमान करदे हन कोई उहदे नाल, क्योंकि कहिंदे हन साखी दे विच के सुदामा गरीब सी, उहदे कोल चावल बन्ने होए सन पोटली दे विच, ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं, ओ की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा। अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू, कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों उहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों एक एक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए, एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाणा मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरदास जी उस दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां, चौथा दाणा मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोख का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनू दे दिते, ते भाई साहब फरमान कर दे।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा जी दी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत हजूरी अंदर बैठ गुर उपदेश अते उदेश नूं उत्साह सहित सरवण कर रहे गुरु खालसा सात संगत माई भाई सतगुरु दा अपना ही परम पवित्र आपा जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। सतगुरां दे चरण शरण आण तों महाराज जी ने मेहरामत करके असां सारिआं नूं ही अपने वाकां द्वारा अथवा अपने हम ख्याल परमेश्वर दे रंग अंदर रंगीजे होए महापुरश ग्रस्ती संत किरत ते कीरत अंदर निपुण भगत कबीर जी दी जुबानदानी द्वारा अंतले शब्द अंदर सानू जीवन दे परम सुख पर आनंद परम तत् अते पूर्ण अवस्था दी प्राप्ति दा ढंग फरमाया। ए जुगतां ए तरीके ए दौर गुरु साहिब जी आप भी फरमान करदे रहे अपने नवाजे गुरसिखां महापुरशां भगतां ते संत जना दी राहीं भी सतगुरु जी ए उपदेश हर बनी जाओ इंसान तक पहुंचाउण दे इच्छक रहे। इस उपदेश नूं महापुरश अज भी अपनी रसना द्वारा अपनी कलम द्वारा ते अपने जीवन दी जुगत द्वारा अमली तौर उत्ते प्रचार रहे। कलमा नाल उपदेश करन वाले भी अनेका ने रसना नाल भी उपदेश करन वाले उपदेशक बेअंत ने पर बड़े फिकर नाल बड़े उचेच नाल उस परमेश्वर दे यस नूं जीवन दे ढंग नूं गुरमत दी व्याख्या नूं जो अपनियां मन बच कर्म द्वारा प्रचारदा है ओ विचारक भी है ते प्रचारक भी है। ध्यान नाल दास दा बचन प्रचारक बेअंत ने अजकल जिन्ने दसां गुरुआं महाराज साहिबान तों पैदा नहीं कर होए इन्ने अजकल असां प्रचारक बन गए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दीआं बीड़ां भी इन्नियां बन गईआं ने जिन्नियां दसां पातशाहीआं तों रल के भी नहीं बणीआं। गुरुद्वारे साहिबान इन्ने बन गए ने जिन्ने सतगुरां तों बनाए नहीं जा सके। तो वेखण विच आउंदा है कि जदों किसे स्याणे कोल बैठिए विचार वटांदरा होवे गुरमत दी गलबात होवे तां फिर अंदरों लज्जा आउंदी है कोठी कंबदी है ते लरजा आंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस तों भी अनंत गुणा होवन तां भी थोड़ा है। कीर्तनी वीर जत्थे प्रचारक ते कलम दे तनी व्याख्याकार कर कर होण जरूरत है लेकिन इस दे नाल सारे ही असां अपनी अपनी जगह ए फिक्र रखिए के गुरु महाराज जी आप किहो जिहा जीवन जी के सानू सदियां तक साडे सामने काया पलट के आए जुगत ओहियो रखी जोत ओहियो रही काया पलटा के समय दी लोड़ अनुसार जलवा नमा होए प्रगट होए जहूर होया जाहर होए अवतार तारिया औतरे ते उन्हां ने सदियां साडे सामने जी के दसिया। ग्रस्ती सन कोई तारकुल दुनिया नहीं सन रिश्तेदारां वाले सन साडे वांगो कारोबार वाले सन साडे वांगो पर इउं दुनिया विच रह के पानी विच रह के किवें नरलेप रहे ने

साहेब कलगीधर पातशाह अकाल पुरख वाहेगुरु दी उस्तुति कर देन पाहे गहे जब ते तुमरे। हे अकाल पुरख वाहेगुरु, जदों तो मैं तेरे चरण फड़े हन, तेरे चरणा नाल जुड़िया हां, फिर मेरी निगाह तले होर कोई पीर पैगंबर औलिया नहीं आया, क्योंकि कोई तेरे वर्गा होवे ते तां आवे ना। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने। जदों तो मैं तेरे चरणा नाल जुड़िया, मैं न गणेश है प्रथम मनाऊ, किशन बिशन कबहू न त्याऊ, कान सुने पहचान न तिन स्यों, लिव लागी मोरी पगियन स्यों। हे अकाल पुरख, जदों तो तेरे चरणा नाल लिव लगी है, फिर मेरी नजर तले होर कोई नहीं आया, कोई तेरे वर्गा होर है ही नहीं। मेर करो त्रिन ते मोह जाए, गरीब निवाज ना दूसर तो सो। 14 लोकां विच तेरे वर्गा कोई गरीब निवाज नहीं।

मैं तेरी पग बन ली है, तू मेरी पग बन ली। ते सिर ते बनी पग नू इज्जत भी समझिया जांदा है कि अज तू तेरी इज्जत मेरी है, मेरी इज्जत तेरी। जदों भी कोई भरा बनदा है आम पगां वटा के पगवट भरा बनदे ने, तो गुरु साहिब जी बाणी विच भी कहंदे ने साबत सूरत दस्तार सिरा दस्तार।

साहब जी दरबार विच सन। हिंदुस्तान ते उस वक्त जहांगीर दा राज सी, तख्त दो, एक तख्त ते गुरु हरगोबिंद साहब बैठे

तीन पैसे पलियों खोल के हाथ विच फड़ ले ने। जहांगीर अपने पलंग ते बैठे कोल इदी बेगम नूर जहां बैठी। तंबू च पैर पाया पर मन नू खिच ना पई। हुण पग जहांगीर दे सिर ते भी है, कलगी भी लगी है, क्योंकि बादशाह इसने तीन पैसे बादशाह दे अगे रखे, मथा टेकिया, हाथ जोड़ के कहन लगा, सच्चे पातशाह मेरा जन्म मरण सवार दे। जहांगीर हैरान होके इस काई दा मुंह देखन लग पिया ते नाले किया, मैं ते बादशाह हां हिंदुस्तान दा, जन्म मरण मैं नहीं सवार सकदा। हां जे तू कवें हेरे जवाहरात महल माड़ियां मैं तेनू दे सकदा। उसने कहा, ना हीरे जवाहरात चाहिए ना महल माड़ियां, बस जन्म मरण सवार दे। जहांगीर कहन लगा, जन्म मरण सवारना मेरे हाथ नहीं, जन्म मरण सवारन वाला दूसरे तंबू विच है।

अचानक ख्याल आया, एक आई सिख वापस मुड़िया जहांगीर दे कोल आया, जेड़े तीन पैसे रख के मथा टेकिया सी वो तीन पैसे चुक के ते फिर बाहर निकल गए। जहांगीर हैरान हो गए, अपनी बेगम नूर जहां नूं कहन

दुनिया मेरे को डरती है कि मैं बादशाह, पर वो डरते ने जिहड़े खुशामदी ने। जहांगीर सोचता पे उधरों सिख दूसरे तंबू वाल तुर पे आ। गुरु हरगोबिंद साहब अपने आसन ते बैठे ने, संगता बैठिया ने ते कीर्तन हो। तंबू च पैर पाया मन खिचिया गया, क्यों महापुरुषा नु मिलिए ता मन जिहड़ा है वैराग विच आ जांदा है, श्रद्धा विच आ जांदा है। किस दुनियावी आदमी नु मिलिए ते मन विच प्यार नहीं आंदा। इस सिख ने गुरु साहिबां दे दर्शन कीते, कहन दी लोड़ ही ना पई कि जन्म मरण सवार दे। साहिबां दे चरणां ते ओ तीन पैसे रख के मत्था टेकिया, बिना मंगिया सब कुछ मिल गया। हुण फैसला सुनन वालिया ने करना है कि पग किहदी उच्ची। एक पासे बादशाह है ओहदे सिर ते भी पग है, एक पासे गुरु है ओहदे सिर ते भी पग है। पर पगां विच फर्क ए, एक पासे जुलम हुंदा है और एक पासे प्यार वंडिया जांदा है। इस वास्ते मीर अब्दुल्ला ते नत्था मल ढाडी कहंदे ने, ऐ गुरु हरगोबिंद साहब पग जांगे।

गुरु साहिबानालों विछड़ गए। सरहंद दे नवाब ने माता गुजरी जी नूं अते छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद ठंडे बुरी दे विच

गर्म कपड़ा भी कोल कोई नहीं, पर फिर भी मन ना डोल रहे है ते ना ही मन डिगा होया। क्यों के जेड़े उच्चे होंदे ने हमेशा उच्चे रहंदे ने।

धर्म बदल लो राज करोगे, नहीं तो तुहानू खत्म कर दिता जाएगा। साहबजादे ने कहा साडे दादे दी पग बड़ी उची है।

जीवन च नाम तो बिना जो कुछ भी चल रहे हैं। महाराज ने तो तरकार पाई उस भगती तो टुट के, भजन तो टुट के, नाम तो बेहूणा जीवन एक सजा है। मनुख इस तरह जीवन के इस बोझ नूं ढो रहा है जिस तरह मजबूरी होवे, बल्कि ना केवल इस जीवन नूं ढो रहा है बल्कि अगे वास्ते भी ऐसा हो रहा है कि इहदा आउण जाण चक्कर। कबीर जी ने बड़ी खूबसूरत गल कही। कबीर जी कहिंदे ने जे तूं इस जीवन विच जो कि इस जीवन का मकसद है वह पूरा ना किया, जिस काम वास्ते तेनू जीवन मिले है वह काम जे तू ना किया पता नहीं तेनू किन्नी वारी आना। भ्रमत फिरत तेलत के कप ज्यो, जिवें कहिंदे ने तेली का बल्द एक चक्कर च पिया रहिंदा है, कोहलू के आले दुआले का चक्कर बनिया रहिंदा है। इस तरह सृष्टि विच महाराज कहिंदे ने आवन आए सृष्टमय बिन बूझे पशु ढोर। जिस बंदे ने अपनी औकात नूं अपनी हस्ती नूं अपने आप नूं कदे वाचन का जतन नहीं किया, अपने आप ते कदे सवाल नहीं किया मैं कादे वास्ते हां, मैनू किस वास्ते भेजिया गया, कदे ख्याल किया है? कोई जानवर इन्ना दिमाग नहीं रखता कि वह अपने आप से सवाल कर सके, उहदे कोल इन्नी सुरत नहीं कि अपने आप से सवाल कर सके। जीव जंतु जानवर जितने भी पशु ने उन्हां दे जीवन का मकसद कितना क्यों है? सिर्फ इतना कि वह साह लेंदे ने, जींदे ने, घर बनाउंदे ने, उन्हां दे बाल बच्चे हुंदे ने, उन्हां बाल बच्चिया की पालना दे विच वह अपनी जिंदगी ला दिंदे ने, परवाह नहीं करते। कई ऐसे जानवर भी देखने विच आए ने जेड़े अपने शरीर के खंभ तोड़ तोड़ के अपने बच्चियां दा आलना बनाउंदे, अपने शरीर के खंभ खिच खिच के बच्चियां दा आलना बनाउंदे, बच्चियां दे सुख वास्ते अपने शरीर से तकड़ा दुख लैंदे। और एक मक्खी ऐसी भी देखने विच आई है तकरीबन भौरे जिड्डी, जिसकी औलाद जो जिसकी संतान जिसका बच्चा उसके शरीर के विचों जब निकलता है तो उसे नूं खा के पलता, उहदे शरीर दे विचों दा बच्चा निकलदा उहदे शरीर दा मादा खा के ओह मर जांदी, मक्खी मर जांदी, उहदा बच्चा उसे दे शरीर दे अंदर दा मादा खा के उहदे शरीर दे उपर बैठा पलदा फिर उड़ जांदा। ते जे बंदा समझे ना कि सांस लेना, सौ जाना, खा के पै रहना, औलाद हो जानी ती उस औलाद की बड़ी संभाल हो जानी, तू बहुत उचेचा कम कर लिया, कुछ नहीं, यह तो जानवरों वाला काम, उन्हें आलना बना लिया तू घर बना लिया, उन्हें कोई खुटकुरना बना लिया तू कोई महल बना लिया, कोई वक्री गल नहीं। गल सिर्फ इनी है कि वह जितनिया जूना ने वह सारिया सिर झुका के चलन वाली, केवल मनुख सिर उठा के चलन वाली जून, यह सीधा तुरन वाले, एदा दिमाग उपर नू है, सिर उपर नू है, इसे करके एक उची गल करदा है, एक नवी गल करदा है। और जुगा पहला जब तो मनुख ने इस धरती दे उते अपना वजूद महसूस किया है उदों तो अंदर एक सवाल उठा है कि इन्हां जानवरां नालों इन्हां आम जीव जंतुआं नालों मैं वखरा, मेरे हत्थां च कुशलता है, मेरे नेत्रां च पछाण है, मेरे कन्नां विच सोझी है, मैनू सो के प्रतीत करन दी समझ है, मैं सुन के महसूस कर सकना, जबकि आम जानवर एक एक गुण लैके बैठे होंगे। कन्न सब जानवरां दे ने, लेकिन सब जानवरां दे कन्न इन्ना कम नहीं करते जिन्ना बंदे दे कन्न कम करते। ते जे किसी जानवर दे केवल कन्न बहुत कम करते ने तो उहदा नक नहीं कम करता, चमगिद्दड़ दे कन्न बड़े कम करते, कुत्ते दा नक बड़ा कम करता, चील दियां अखां बड़ा कम करदियां ने, लेकिन बंदे दा यह सारा कुछ बड़ा सख्त कम करता है, बड़ा जबरदस्त कम दा है, बड़ा सूझ वाला है। और यह सारिया तत्ता ने मिलकर, सारे इंद्रा ने मिलकर मनुख नूं विशेष बना दिता। इस विशेष मनुख ने अपने आप से सवाल किया मैं कादे लिए, और जुगां तो यह सवाल करता आया, मुड़ मुड़ के इहनूं जवाब मिलता रहा है। एक गल बड़ी खूबसूरत एक विचारक ने कही, वह कहिंदा निरंकार ने बड़ा कुछ रचे, लख 84 जोन सबाई मानस को प्रभदीवड़िया,
مالک نرنکار نے سب کچھ رچیا ہے تے سارے رچنا دا سکھر جو ہے وہ منک ہے. واہگرو دی ساری رچنا دا کلائمیکس منک ہے. سب تو ودیا رچنا وہ منک ہے. ہوں منک بھی بڑا کچھ رچ رہے ہیں. سدھارن ڈنڈے تو شروع ہو کے یتر تو شروع ہو کے اج یہ کمپیوٹر اس نو آپ نو حیران کری جا رہے. بندے نے بڑا کچھ رچیا ہے لیکن بندہ سنتوشت کوئی نہیں, کیونکہ یہ جو کچھ رچنا ہے, جو یہ رچنا کا سکھر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس نے یہ رچیا انہوں لب لوگ جان لو. جی وہ نہیں جان سکتا تو اپنے آپ نو جان لو کہ میں کی ہاں تے کدے نہیں. یہ سوال بڑے چر کا چلے آ. جد جد کسی نو یہ جواب آڑیا ہے کہ میری ہوند کدے لئی ہے, ایک نویں دھرم نے جنم لیا. جد بھی کسی نو یہ سوال کا جواب ملیا ہے کہ منکھا جیون کدے لئی ہے, ایک نویں دھرم کا جنم ہوئے. اس دھرم کے انوسار ہی بھی لوگ ہوئے نے, کیونکہ وہ دھرم کے انوسار ہی ہو کے لوگوں نو اپنا جیون سکارتھا ہوں جا کے سما پا کے لوگوں نے دھرما نو کیول کرم کانڈ بڑھا دیتا. دھرم پیہے ہوں چلے گئے, مڑ کے نواں دھرم لوڑ محسوس کی جاتی رہی. دھرما کا جنم ہوں رہا, منک کے اندر سوال اٹھتا رہا, جواب مڑ مڑ کے یہی سی. دھن گرو نانک دے سدیوی دھرم دے وچ بھی یہی جواب ہے, پرانی تو آیا لاہ لین, تیری زندگی کا تو مقصد ہے. لکھ چوراسی جون سوائی مانس کو پربدی وڈیائی, اس پوڑی تے جو نر چوکے سو آئے جائے دکھ پائے دا. جے اس جیون وچ کوئی اچیچی گل نہ کیتی, سرجن ہار نو نہ پچھانے آ, او دی سرجنا دی سکھر اپنے آپ نو نہ پچھانے آ, تے پھر او پرمت فرت تیلک کے کپ جیو گت بن رہن بہائی ہے. زندگی تا لنگ جائے گی لیکن یہ چکر بنیا رہ جائے گا. آن جان دا کبیر جی دی جیونی وچوں ایک ساکھی ملدی ہے, بڑی پرسدھ ساکھی. کبیر جی نے باہر پھردیاں ایک بیل ویکھیا سی. بیل او جس نو بہت

0: खालसा जी आओ सब तो पहला गुरु साहिबां दा बख्शा फतेह दा जयकारा बुलंद करो ते आखो गज के
1: वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
0: समय समय दियां जालम सरकारां सिंघां सरदारां नूं खत्म करन दियां कोझियां चालां खेड़दियां रहियां हन पर सिख कौम हमेशा चढ़दी कला विच रही है। सन 1726 ईस्वी नूं जकरिया खान पंजाब दा गवर्नर बनिया। पंजाब दी बागडोर संभालदियां ही उसने पंजाब दे पहले जालम हाकमां दे पद चिन्हां ते चलदियां होयां सिख कौम नूं अपना निशाना बना लिया। उसने सिंघां दे सिरां दे मुल रख दिते अते हुक्म जारी कर दिता कि जेड़ा सिंह दी दस पावे फड़ावे जां मार के लियावे तां उस नूं शाही खजाने विचों इनाम दिता जावेगा। इस फरमान ने पत्ता पत्ता सिंघां दा वैरी बना दिता। कई निर्दोष सिंघां नूं मौत दे घाट उतार दिता गया। इनाम ते चौधर दे पुखियां ने कई संत महात्मा सिख फड़वाए अते मरवाए। मुक्ति गल लाहौर दे सूबे विच सिंघां दा रहना मुश्किल हो गया। समय दी हालत नूं वेखदिया होया सिंघां ने जंगलां बेलियां विच लुक छिप के रहना शुरू कर दिता। जदों इन्हां जालमां नूं कोई भी सिंह नजर ना आया तां फौज ने अपने हाकमां नूं सिंघां दे खात्मे दी इतला बड़े फकर नाल हे